0: It's hot.
1: मिर्ची, it's hot.

एक भयंकर ट्रैफिक जाम है जिसमें से एक बंदा अपना सर निकालता है अपनी फैंसी सी बड़ी गाड़ी से और दूसरे बंदे से कहता है, मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस ट्रैफिक जाम में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के अगेंस्ट थोड़ी सी स्क्रेप हो गई और दोनों बड़ी गाड़ियां थी। सो दिस गाय गॉट आउट ऑफ हिज बड़ी गाड़ी, मतलब उसने अपना सर निकाला शीशे से एंड सेड, तूने मेरी गाड़ी खराब की है, मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। एंड दैट गाय लुक्स एट हिम, और ये सब ट्रैफिक जाम में हो रहा है ब्रो। ही लुक्स एट दैट गाय एंड सेज, सॉरी ब्रो, लेकिन वो काम मेरी बंदी का है, सिर्फ वो मेरा जीना मुश्किल कर सकती है। ही फ्लिप्ड हिम अ फिंगर और वैसे ही ट्रैफिक जैम खुल गया। एज इफ ये यूनिवर्स चाहता था कि ये छोटा सा ड्रामा मेरी आंखों के सामने हो जाए, ऐसे ही दिन बेटर हो जाता है नी। और अगर आपको भी ऐसे लगता है कि आपकी जिंदगी बकवास, बदतर, एब्सोल्यूटली डिस्गस्टिंग बनाने का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के पास है, मेरे यार, व्हाई डोंट यू हिट मी अप। आपकी इस बीमारी का इलाज भी करने की कोशिश करेंगे हम। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। अब ढूंढो मुझे मीठा मीठा ऑन योर सोशल मीडिया, एंड व्हाइल यू डू ऑल ऑफ दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy, it's hot.
1: Do to leki mandri la de, din to leki.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने। एक नई एंट्री है हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल गाना स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की, विच इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग म्यूजिक। वर्ल्ड म्यूजिक डे का वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑन मिर्ची। शुरुआत करते हैं ऑन दिस काउंटडाउन विद गाना नंबर 10, अनीश सरकार हृदय का गाना। गाने का नाम है उड़ी उड़ी। दो हफ्ते से इस पोजीशन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद द कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, आदित्य रिखारी रेवट और कुटले खां का गाना, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी इज ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे, लेकिन जो ये वाला गाना है आदित्य रिखारी की आवाज, रैवेटोर का म्यूजिक अलॉन्ग विद कुटले खान, ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत, इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न म्यूजिक. एक पॉप स्टार, एक फोक आर्टिस्ट और एक कंटेम्प्रेरी उबर कूल प्रोड्यूसर, ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाइए, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली रियली दिल से बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है. नाउ इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक तरह से हम सबके एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं कैप्चर करता है. आप मैं हर कोई एक जर्नी पर है. डेस्टिनेशन तो आने वाली है लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत खूबसूरत और हम इसको तय करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपने सपनों के पीछे हम काम कर रहे हैं. एंड समहाउ इंडिपेंडेंट म्यूजिक एग्जैक्टली उन फीलिंग्स को कैप्चर कर पाता है जो फिल्म म्यूजिक, बड़े पर्दे पे उतरने वाली कहानियां नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये वाली फीलिंग मे बी उस किरदार के लिए हो. बट व्हेन इट्स अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक, वो मेरी आपकी आर्टिस्ट की ऑनेस्ट फीलिंग है. यू नो, वो वाली फीलिंग जब हमारा सपना पूरा भी नहीं हुआ पर हम इतना तो आगे आ चुके हैं दैट वापस नहीं जा सकते, पर अब इतना आगे भी नहीं आए हैं कि सेलिब्रेट करना शुरू करें. गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम. इट्स बाय MC Square, राधिका भिडे एंड विकेट सनी. मे बी ये नाम आपके लिए नए हो लेकिन जब आप गाना सुनेंगे आई नो इट विल हिट होम. म्यूजिक, गाने के लिरिक्स उस जर्नी को एक्नॉलेज करता है जो मुझे पता है यू आर ऑलरेडी ऑन इट. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. अ नई नवेली एंट्री इस गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय MC Square, राधिका भिडे, विकेट सनी, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8. किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए. सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए. आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ. रुकी नहीं सांसे तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए. दुनिया घुमा रही है, मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ. कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ. मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ. मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ. है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है. जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है. वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला. इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है. घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं. जब पेट तो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं. चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं. पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं. टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है. कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है. लिखी है ऊपर वाले ने, जिंदगी है या मौत की सजा. मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 6 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन दिस शो जिसका नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना बताना है, कोई किस्सा कहानी शेयर करनी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट जो गाने हमें पसंद आते हैं ना, जो एक्चुअल में दिल से पसंद आते हैं, जो हम जितनी बार सुने उतना कम लगता है, वो शायद उस गाने के साथ जुड़ा जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स इज मेलोडी, लिरिक्स, आर्टिस्ट्री, वो सब है, एंड कूडोस टू दैट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द आर्ट एंड आर्टिस्ट। बट आज मैं ना उस गाने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसा कैसे होता है दैट एक ही गाना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए वो पहले ब्रेकअप का गाना है, किसी के लिए एक शाम जब वो अकेले थे छत पे बैठ के आसमान देख रहे थे, मे बी उस गाने की दो लाइन जो सीधा उनके दिल के उस स्पॉट को हिट कर गई जो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि एग्जिस्ट भी करता है। एंड ऐसा वंस इन रेयर ब्लू मून होता है ना, कोई गाना ऐसा दिल में उतरता है कि जब हम कुछ सालों बाद उस गाने को सुनते हैं, वो गाना तो अच्छा लगता ही है, बट वी ऑल्सो रिमेम्बर दैट एक्सपीरियंस, उस दिन जैसा फील हुआ था। क्योंकि इस पूरे हफ्ते हम वर्ल्ड म्यूजिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, म्यूजिक इज ऑल अबाउट how it makes us feel. I want to tell you about this one song, जिसको जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरी आंखों में एक्चुअली आंसू आ गए थे। साल 2016 की बात है, मेरा पहला गोवा ट्रिप मेरे दोस्तों के साथ। हम वैगेटर बीच पे थे, रात को 2 बज रहे थे, मजे कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे दोस्त जैम कर रहे थे, मेरा एक दोस्त गाना गा रहा था और अपना गिटार उठाया एंड उसने ये गाना गाया।
2: शाम तन्हा,
0: कॉल्ड शाम तन्हा बाय अग्नि। मैं पूरा गाना आपके लिए डेफिनेटली प्ले करूंगी, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट दिस सॉन्ग मेड मी फील बैक देन। उसने कुछ अलग नहीं किया, मेरे दोस्त ने कोई ऐसे परफॉर्मेंस में चार चांद नहीं लगे, उसकी आवाज थी, समुंदर की हवा थी, या वो लाइन्स दैट तेरे जाने से मैं अधूरा रह गया, आई स्टिल डोंट नो वॉट वॉज इट, बट दैट सॉन्ग मेड मी वीप। मैं आंखें चुरा चुरा के अपने दोस्तों से रो रही थी, बिकॉज इट मेड मी फील समथिंग जो मुझे पता भी नहीं था कि मैं फील कर रही हूँ उस गाने से पहले। इट इज अ गॉर्जियस सॉन्ग, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट बिकॉज ऑफ दैट वन एक्सपीरियंस दिस विल ऑलवेज बी वन ऑफ दोज वेरी चेरिश्ड मेमोरीज एंड वेरी चेरिश्ड सॉन्ग फॉर मी। हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आज मेरी पसंद का स्पॉटलाइट अग्नि द बैंड का गाना, गाने का नाम है शाम तन्हा। ट्रस्ट मी, दिस वन विल हिट होम। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

माय गॉड, 100 टाइम्स ओवर दिस सॉन्ग स्टिल मेक्स मी फील दैट वे. मोहन करण की आवाज, अग्नि द बैंड का गाना, दैट वॉज शाम तन्हा. At RJ Kanig on Instagram par out, tell me about a song like this which made you feel so strongly that aaj bhi jab aap gaane ko sunte ho, you go back to that experience jab ye gaana sabse zyada hit kiya tha. At RJ Kanig par aakar quickly is indie pop quiz ka bhi answer kare. Agni the band ka ek gaana tha jo ek reality TV show par aaya tha, which was all about love. Thoda sa hint dete hain aapko. At RJ Kanig par aake batao kaun sa hai ye gaana.

Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अकोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. गाने का नाम है अर्ज किया है. 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर अर्ज किया है. इस प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 5.

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: दिलजीत दोसांझ, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? इस साल तो आंसर नहीं मिलने वाला है। उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके डीलर इज दिस वीक का गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Instagram par jao, mujhe follow karo. Mera handle is @RJKanika. Har hafte we receive lots and lots of requests for our favorite segment of the show, which is called
1: Kanika's Cassette Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज And the song we're going to feature this week is Ek Second. मैं थोड़ी dramatic हो रही हूँ because this has been the most requested cassette classic of all time. मुझे इतना honor feel होता है ना जब मैं वो गाने play करती हूँ जिनको सुन के मैं बड़ी हुई हूँ. And आज का cassette classic exactly वही वाला गाना है. It's Myri by Euphoria.
2: Myri, आप ही
0: ये गाना सिर्फ यूफोरिया का डेफिनेशन सॉन्ग नहीं है बल्कि इंडी पॉप एज अ जॉनरा का पूरा डिफाइनिंग साउंड बन गया था। एक पूरी जेनरेशन की कलेक्टिव मेमोरी है ये गाना। इवन टिल डेट आई थिंक द जेन ज़ीज़, पीपल हु आर बोर्न आफ्टर 2000s, जब लोग इस गाने को डिस्कवर करते हैं, इसकी म्यूजिकलिटी से इंट्रोड्यूस होते हैं, आई नो द सॉन्ग इज स्टिल फाइंडिंग न्यू ऑडियंस एवरी डे। बट आई वॉन्ट टू टेक यू बैक टू द यूफोरिया डेज। साल था 1998, केबल टीवी नया था एंड हिंदी फिल्म म्यूजिक वॉज एवरीथिंग। इंडियन इंडी जैसा कुछ ऐसा था नहीं, बट कहते हैं ना, सम पीपल हैव गॉट दैट क्रेजी इन देम। ऐसे एक आर्टिस्ट थे डॉक्टर पलाश सेन। एक्चुअली डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन, लखनऊ में पैदा हुए, दिल्ली में पले बड़े। उन्होंने अपना एक रॉक बैंड बनाया हिंदी में एंड दैट वॉज यूफोरिया। पहली एल्बम आई कॉल्ड धूम, लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने डांस किया, फुल ऑन सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक। फिर साल 2000 में आई उनकी दूसरी एल्बम कॉल्ड फिर धूम, और उस एल्बम में था ये गाना मायरी। ये कुछ अलग था, कुछ अलग ही हो गया था एंड धीरे धीरे सबको इस बात का अंदाजा हो रहा था। ये गाना कहीं कहीं में आपको एक स्पिरिचुअल स्पेस में ले जाता है, कहीं रोमांटिक स्पेस में, बट अंडरलाइंग इट्स अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग। लेकिन वो अपने प्यार को चेरिश कर रहे हैं और उसको चेरिश करते हुए पलाश सेन इस गाने के थ्रू अपनी मदर को वो कहानी सुना रहे हैं, मायरी याद वो आयरी, कि मुझे उसकी याद आ रही है जो अब मेरी लाइफ में नहीं है, विच इज सो क्यूट। अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए इससे पहले कि मैं यार रोने लग जाऊं इस गाने के बारे में बात करते हुए। द सॉन्ग विच इज मोर देन अ सॉन्ग, इट्स एन इमोशन, इट्स अ जर्नी बैक टू आवर चाइल्डहुड, अ लव सॉन्ग जो डॉक्टर पलाश सेन ने अपनी मदर के लिए लिखा। गाने का नाम है मायरी बाय द वन एंड ओनली यूफोरिया। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: आई थिंक इस गाने के बाद कैसेट क्लासिक को हमें टाइम मशीन बुलाना चाहिए था, बिकॉज आई वॉज टेकन बैक टू द टाइम. गाना जब शुरू होता है वो चार स्ट्रिंग्स बजते हैं एंड आई एम टेकन टू दिस डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ जिंदगी बहुत सिंपल है, दोस्त तुम्हारे करीब है एंड फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. पलाश सेन द जीनियस दैट यू आर, दैट वॉज मायरी बाय यूफोरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनिग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, ट्रस्ट मी वी टेक योर रिकमेंडेशंस वेरी सीरियसली. इस गाने को प्ले करने में कुछ वक्त लग गया, बट वो जो भी गाना है फ्रॉम द 90s 2000s व्हिच यू थिंक इज स्टिल द सॉन्ग दैट डिजर्व्स ऑल द लव, हमसे आके शेयर करो. अश्का आई माय साउंड प्रोड्यूसर एंड आई विल प्ले अ सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले बारे गाने की बारी. 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है बैरन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। ये वो शो है जो हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर दिस वीक वाज उड़ी उड़ी बाय अनीश सरकार एंड हृदय। फिर आदित्य रिखारी, रावत और कुटले खा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9। नई नवेली एंट्री लॉन्ग वे फ्रॉम होम दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। दिलजीत दोसांझ, सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 7। मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 6। अनूप जैन का अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 5।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: दिलजीत दोसांझ द डीलर ऑन गाना नंबर 4।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डाब दबीना।
1: बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर 3। द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके संजू राठौड़ का बैंगल्स, दो हफ्ते से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, येट अगेन करण औजला इक्की का गाना बॉयफ्रेंड फ्रॉम पी पॉप कल्चर, स्टिल ट्रेंडिंग एंड हाउ बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। बैंगल्स ऑन गाना नंबर 2 एंड देन बॉयफ्रेंड बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: बॉलीवुड के लिए फ्राइडे होता है उनका जजमेंट डे. हर फ्राइडे बॉलीवुड को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक नया पोस्टर, एक नया ट्रेलर, एक नया गाना, एक नई कहानी. लेकिन हर साल सिर्फ कुछ ही चीजें वक्त की कसौटी पर टिकती हैं, बाकी सब कंटेंट बनकर रह जाती हैं. और मुझे पिछले कुछ दिनों से एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है. हमारे पास आज सब कुछ ज्यादा है. We've got bigger budgets, we've got bigger marketing, we've got bigger platforms. और फिर भी क्या हम वैसे कल्चरल मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो 10, 20, 25 साल बाद भी याद रह जाएंगे? या हम सिर्फ अगले फ्राइडे तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? आज के काउंटडाउन में इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं. म्यूजिक भी होगा, मेमोरीज भी होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब शायद बॉलीवुड को खुद ढूंढने पड़ेंगे. हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन. एंड इस एपिसोड का पहला गाना है उस फिल्म से जिसे तारीफ तो मिल रही है पर बॉक्स ऑफिस की मोहर नहीं. मैं वापस आऊंगा बाय इम्तियाज अली. एंड गाना नंबर 20 पर है इश्क मस्ताना, विच रियूनाइट्स मोहित चौहान विद एआर रहमान एंड इरशाद कामिल फॉर एन इम्तियाज अली फिल्म. ये तो हमने पहले भी देखा है.
0: नंबर 20.

वेलकम टू द जंगल। और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो एक बात समझ आ गई होगी, आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, अटेंशन है। हर प्लेटफॉर्म आपको बुला रहा है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील्स, पॉडकास्ट, गेमिंग, सब आपके वक्त के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता था कि फिल्म्स अब और बेहतर हो जाएंगी और हिम्मत वाली होंगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है, कई बार लगता है कि इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस हफ्ते लगान के 25 साल पूरे हो गए हैं और उसने मुझे एक बात याद दिला दी। 2001 सिर्फ एक अच्छा साल नहीं था, 2001 एक स्टेटमेंट था। लगान तो आई थी, लेकिन उसी दिन उसके साथ आई एक और फिल्म।

एक फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तानी कहानियां ऑस्कर तक पहुंच सकती हैं। एक फिल्म ने थिएटर्स में ऐसी भीड़ जमा की जो आज भी रिकॉर्ड बुक्स में जिंदा है। और एक फिल्म जिसने बॉलीवुड को ग्लोबल फैमिली इवेंट बना दिया। सोचिए, तीन फिल्में, तीन अलग अलग फिल्म मेकर्स, तीन अलग अलग ऑडियंसेस और तीन अलग अलग विजन्स, और तीनों एक ही साल में आई। अब सवाल यह है, जब 2001 में ये मुमकिन था तो 2026 में हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा स्क्रीन्स हैं, ज्यादा मार्केटिंग है, ज्यादा डेटा है, लेकिन क्या हमारे पास उतनी ही कन्विक्शन है? क्योंकि क्लासिक्स बजट से नहीं बनते। क्लासिक्स तो बनते हैं जब फिल्म मेकर्स ट्रेंड फॉलो करना छोड़कर ट्रेंड क्रिएट करते हैं। और शायद इसी भागदौड़ में कुछ फिल्में आती हैं और कुछ नोटिस हुए बिना निकल जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता। उसका एक गाना मिर्ची टॉप 20 में डेब्यू कर रहा है। इट्स अ फील गुड हैप्पी गो लकी सॉन्ग संग बाय श्रेया घोषाल। गाना नंबर 18 है नब्ज नब्ज। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10
1: ओल

सर्टिफाइड बैंगर बॉस, वल्ला वल्ला वल्ला। और मुझे लगता है कि कॉकटेल 2 क्वाइटली इस साल की सबसे एक्साइटिंग साउंडट्रैक्स में से एक बन रही है। पहले आया जब तलक, देन यू हैव द सॉफ्ट तुझको, एंड फिर आया माशूका, और अब आ गया वल्ला। चार गाने, चार अलग अलग मूड्स, लेकिन एक ही बात कॉमन, पर्सनैलिटी। नाउ हार्डी संधु इस गाने में गाते कम है, स्टाइल ज्यादा छोड़कर जाते हैं, और प्रीतम दा ने जो ग्रूव बनाई है वो सीधा स्पीकर से निकलकर हमारे खून में घुस जाती है। ये उन गानों में से है दैट यू कैरी विद योरसेल्फ। लेकिन गाने और फिल्मों में एक फर्क होता है। एक फिल्म का साउंडट्रैक आप इंस्टिंक्ट से बना सकते हो, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट से जीतती है या फिर हारती है। और इसलिए मुझे शाहिद कपूर की कही एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। शाहिद ने हाल ही में कहा कि अब वो स्क्रिप्ट्स सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर, अपने सिक्स सेंस पर डिसाइड नहीं कर रहे। नरेशन के वक्त तीन और लोग उनके साथ रूम में बैठे होते हैं, यानी कि तीन और ओपिनियंस, तीन और पर्सपेक्टिव्स। और शायद ही कमजोरी नहीं है, शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट लोग वो नहीं होते जो हमेशा अपनी बात लोगों से मनवाते हैं या खुद मानते हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो समझ जाते हैं कि यार दुनिया बदल रही है, और बॉलीवुड की ऑडियंस वो तो हर रोज बदल रही है। इसी सवाल से वरुण धवन भी जूझ रहे हैं। डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी को ऑडियंस ने कभी सर आंखों पर बिठाया था, इन क्या वो फॉर्मूला आज भी उतना ही काम करता है? बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और चार्ट्स दोनों फिलहाल सवाल पूछ रहे हैं। नंबर 6 से फिसलकर नंबर 9 पर आ गया है ये गाना, व्याह करवा दो जी, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ है जवानी तो इश्क होना है। नंबर 9।

मुझे ऑनेस्टली इस गाने के चार्ट्स पर ऊपर चढ़ने से बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि कुछ फॉर्मूलास कभी पुराने नहीं होते। वन कैची हुक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा स्वैगर और पब्लिक का कनेक्शन तुरंत बन जाता है। दैट इज ऊंचा लंबा कद फॉर यू। लेकिन 2026 के पहले 6 महीनों ने सच से मुलाकात करवा दी थी हम सबकी। अरिजीत सिंह ने साल की शुरुआत में ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ये सबको याद है। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जाने से पहले पूरा साल अपने नाम लिख कर जाऊंगा। सबसे पहले ही गेव अस दिस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। नंबर 7।

एक ऐसा गाना जो आज भी चार्ट्स की धड़कन बना हुआ है, इस हफ्ते नंबर 7 पर है। एंड देन आई एक फिल्म कॉल्ड 21 जिसमें अरिजीत गेवास सितारे।

0: फिर से, और ये सब रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद। अजीब बात है ना, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाते हैं। अरिजीत सिंह रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा नजर आने लगे हैं, शायद इसलिए क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सिंगर्स की नहीं रहती, वो एक जनरेशन की आवाज बन जाती हैं। तो अगर ये अरिजीत सिंह का फेयरवेल लैप है तो बॉलीवुड ने इससे खूबसूरत फेयरवेल शायद ही कभी देखा होगा। अब देखना यह है कि क्या उनका अगला मास्टरपीस नंबर वन की रेस में और तेजी से दौड़ सकता है, स्लोली एंड स्टेडिली, दिल जीतते हुए। This one is from Cocktail 2. It's the biggest love anthem of this summer. Gana number 6 hai Tujhko with Arijit Singh and Sunidhi Chauhan.
1: Number 6.

कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके आते ही समझ आ जाता है कि उनका हिट होना तय था। 3 हफ्ते पहले चार्ट्स पर एंट्री की माशुका ने और आज इट शॉट अप स्ट्रेट नंबर 2। माशुका इस वक्त वही कर रहा है जो हर बड़े समर एंथम को करना चाहिए, गाड़ियों में बज रहा है, रील्स पर चल रहा है और लोगों के दिमाग में बिना परमिशन के घुस चुका है। लेकिन मुझे राघव चैतन्य की एक और बात बहुत पसंद है। वो सिर्फ गाना गाता नहीं है, वो गाना आपके अंदर उतार भी सकता है और गाने को भी उतार सकता है, वो भी उसके पूरे मेकअप के बिना। कॉकटेल 2 की कहानी इज सेट इन इटली, और अगर आप कभी इटली गए हैं तो आपने वो मंजर जरूर देखा होगा या एटलीस्ट यूट्यूब पर देखा होगा। एक सिंगर, एक गिटार और पूरी भीड़ चुपचाप उस बंदे को सुन रही होती है। इट्स ए टिपिकल इटालियन सेटिंग, और राघव ने माशुका का एक ऐसा ही स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाया है। ना बीट्स है, ना प्रोडक्शन है, ना इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स है तो सिर्फ राघव की आवाज एंड द फील्स।

यही तो असली टेस्ट होता है, जब गाने से सब कुछ निकाल दो और फिर भी गाना बचा रहे। लेकिन मिर्ची रॉ 20 का क्राउन अभी भी किसी और के पास है। पिछले लगभग 5 महीनों से हर चैलेंजर को रोककर, हर नई एंट्री को देखकर बस मुस्कुराते हुए ये गाना टिका हुआ है नंबर 1 पर। फिर से इट्स जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुबंती बागची, दिस इज शरारत, एंड अब हो गए इसे पूरे 18 हफ्ते। नंबर 1।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 के इस एपिसोड को यहीं पॉज करते हैं। वेल, नए गाने आएंगे, नए ट्रेंड्स भी आएंगे और नए स्टार्स भी आएंगे, लेकिन अगले एपिसोड पर मिलकर देखेंगे इनमें से कितनी चीजें वाकई टिकती हैं। तब तक के लिए म्यूजिक लाउड रखिए, ओपिनियंस अपने रखिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।
2: किंज करो तारीफ तेरे चेहरे दी, किंज करो तारीफ।

Michi. It's hot.

0: Energy. It's hot. Mirchi, it's hot.
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी,

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

देखो अगर अलार्म क्लॉक्स की फीलिंग्स होती ना तो आज वो बोलती व्हाई एम आई द विलन एवरी मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स जो अभी अभी शुरू हुआ है। यहाँ पर चाय थोड़ी सी कड़क होती है, ट्रैफिक थोड़ा सा ड्रामेटिक होता है और हमारा स्लीप स्केड्यूल जो है वो फुली गड़बड़ होता है। आज सुबह अगर तुम ऑफिस जा रहे हो, स्कूल ड्रॉप ऑफ कर रहे हो, यहाँ पर जूम का कैमरा ऑफ करके ऑस्कर विनिंग वर्क फ्रॉम होम परफॉर्मेंस दे रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अपने साथ में रखो। वैसे एक्सपैट लाइफ कमाल की होती है। इंडिया में मम्मी पूछती है खाना खाया और यहाँ पर रिलेटिव्स पूछते हैं बेटा कॉस्को का मेंबरशिप लिया कि नहीं लिया। सो ग्रैब दैट कॉफी, चाय, प्रोटीन शेक या फिर तुम्हारा क्रिस्पी ब्रेकफास्ट, जो कुछ भी तुम्हें फंक्शनिंग ह्यूमन बनाता है वो सब कुछ ग्रैब करके बैठ जाओ यहाँ पर, क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग शुरू हो चुका है। यहाँ पर गॉसिप, गपशप, न्यूज अपडेट्स एंड मच मोर होने वाला है शुरू, और मैं बोले तो प्रिसला तुम्हारे साथ में हूँ। फटाफट से तुम मुझे अपने साथ इंस्टा और एक्स पर भी रख सकते हो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444। स्टे ट्यून्ड।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब चलने वाले हम टाइम मशीन में। वूम वूम वूम। सबसे पहले 1497 एक्सप्लोरर जॉन कैबट रीच्ड ईस्टर्न कनाडा एंड बेसिकली सेड आई एम द फर्स्ट वन अराइविंग हियर। 1509 में हेनरी VIII बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। 1812 में नेपोलियन डिसाइडेड इनवेडिंग रशिया वाज अ ग्रेट आइडिया। 1948 में द बर्लिन ब्लॉकेड बिगन, वन ऑफ द कोल्ड वॉर्स बिगेस्ट स्टैंड ऑफ्स। And then fast forward to 2010, Wimbledon witnessed the longest tennis match ever. John Isner versus Nicholas Mahut. The match lasted 11 hours and 5 minutes over 3 days. Wow. And that's it for आज का history lesson with me Priscilla. मुझसे बातें करनी है तो मुझे follow कर लो। Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग सनशाइन, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड अब सुनने वाले हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर वेदर का हाल चाल। राइट नाउ वी सिटिंग प्रीटी एट 61 डिग्रीज फारेनहाइट, क्लियर स्काइज हैं, लेकिन थैंक्स टू अ बिट ऑफ विंड इट्स एक्चुअली मेकिंग इट फील लाइक 58 डिग्रीज फारेनहाइट। एंड गुड न्यूज ये है कि क्लियर स्काइज आर स्टिकिंग अराउंड ऑल डे, यानी कि आज अम्ब्रेला की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, कोई वेदर का ड्रामा नहीं होने वाला है, नो सरप्राइज प्लॉट ट्विस्ट, इन शॉर्ट देयर इज गोइंग टू बी नन रेन। Temperature will start around 60 degrees Fahrenheit this morning and climb all the way up to a gorgeous 83 degrees Fahrenheit this afternoon, and it'll feel warmer about 84 degrees Fahrenheit. So yes, it's one of those classic days where you leave home dressed for chai weather and return dressed for mango lassi ka weather. Rain lovers, सॉरी यार, आज के दिन वीव गॉट अ ड्राई डे। पिछले 24 घंटों में हमने 4 मिलीमीटर की बरसात देखी, बट द नेक्स्ट 24 आवर्स वील हैव जीरो प्रेसिपिटेशन। एंड आज का हाई जो है इट्स एक्चुअली वार्मर देन यस्टरडे। कल मैक्सिमम टेम्परेचर गया था 71 डिग्रीज फारेनहाइट तक, वेल टूडे इज एमिंग फॉर अ मच मोर एम्बिशियस टेम्परेचर, दैट्स 83 डिग्रीज फारेनहाइट। और अब बाहर जाते वक्त अपना सन प्रोटेक्शन SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना, लेयर के प्लेयर बनकर बाहर जाओ और अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एंड सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में। मुझसे बातें करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड इट्स टाइम फॉर मिर्ची आवर का 3 यानी कि अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड क्विकली। सबसे पहले न्यू बुक कॉल्ड रेजिम चेंज क्लेम्स दैट द यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस वंस सजेस्टेड इंडियन ट्रूप्स कुड बी यूज्ड इन अ यूक्रेन पीस कीपिंग रोल। अकॉर्डिंग टू द बुक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टेडली लाफ्ड ऑफ द आइडिया सेइंग इंडिया प्रोबेबली वुडंट बी इंटरेस्टेड इन फुटिंग द बिल। Number two, a tragic case from Pune continues to make headlines. Police investigating the death of businessman Ketan Agrawal says CCTV footage and a suspicious hoodie worn during extremely hot weather became important clues in the case. Authorities are continuing their investigation. And number three, actress Trisha Krishnan shared a birthday post for actor and Tamil Nadu Chief Minister Vijay, calling him the person who makes it all worth it. The internet, of course, immediately put on its detective hat and started decoding every emoji. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisila tumhare saath mein. Mujhe apne saath chipkaye rakho. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi. That is 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तेरी मम्मी की जय,

है पसीना, शक्ल है इंडियन, बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. एंड इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर हैप्पी वाला बर्थडे टुडे ऑन जून 24th, देन फर्स्ट ऑफ ऑल जन्मदिन मुबारक हो. मे योर कॉफी बी स्ट्रॉन्ग एंड योर वाईफाई बी स्टेबल. एंड नाउ लेट्स चेक आउट विच फेमस सेलिब्रिटी इज ब्लोइंग आउट कैंडल्स विथ यू टुडे. लीडिंग द बर्थडे स्क्वाड इज फुटबॉल लेजेंड नन अदर देन लायनल मेसी. सो इफ टुडे इज योर बिग डे, टेक्निकली यू आर शेयरिंग इट विथ वन ऑफ द GOATs. One of the GOAT. Also celebrating today is the hilarious Mindy Kaling. And then we've got Solange Knowles and Mick Fleetwood and the legendary Jeff Beck. And from my binge watch crowd, today also is the birthday of Ian Glen, Minka Kelly, Beanie Fletstein and Erin Moriarty. So agar aaj ke din tum is dharti par aaye the na, you are in excellent company. Athletes hain, actors hain, musicians hain, comedians hain. Clearly, it's absolutely not an average day to have a birthday. So, aaj agar tum celebrate kare with a cake, cupcake, gulab jamun or even an extra large chai, make today count, kyunki aaj calories count nahi hoti. Apne birthday shoutouts mujhe bhej sakte ho. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That's MIRCHIPRIS. And WhatsApp number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Well, I'll stay tuned and stay hot.

0: टाइम फॉर योर गोल्ड एंड सिल्वर रेट अपडेट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला.
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,320 $4,320 पटरे हाउस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. इस फादर्स डे की सिलेक्शन पे जब 22 कैरेट गोल्ड मेंस ब्रेसलेट 22 कैरेट गोल्ड की चेन 22 कैरेट गोल्ड के मेंस सिक्की कड़ा या प्लैटिनम की चेन्स और प्लैटिनम के मेंस बैंड. आइए राज ज्वेल्स की खूबसूरत सी सिलेक्शन देखने के लिए जिसमें आप आज 0% इंटरेस्ट जीरो डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी अप्रूव होने पे घर ले जा सकते हैं और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स को पैसे दे सकते हैं फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए. मिलके राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग.
0: एंड दैट्स इट फॉर योर गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझसे बातें करनी है तो कनेक्ट करो. मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला एंड इट्स टाइम फॉर मिर्ची आवर का 3, यानी कि 3 अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले यूके पॉलिटिशियन नाइजल फराज सेज दैट इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर माइग्रेशन टू ब्रिटेन कुड बिकम मोर लिमिटेड ओवरऑल बट हाईली स्किल्ड इंडियंस वुड स्टिल बी वेलकम्ड। And number two per WhatsApp's new global CEO Kunal Shah revealed that at just 14 years old, he worked as a delivery boy, sold mehndi cones, taught computer skills, and even sold CDs to help support his family after tough financial times. And finally, FIFA World Cup say Cristiano Ronaldo has done it again. The Portugal captain has become the first footballer ever to score in 6 different FIFA World Cups. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Main hoon Prisila. हमारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड नाउ वेलकम टू राशि जोन, जहाँ पर हम बातें करने वाले हैं आज का दिन कैसा जाने वाला है।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज, सबसे पहले योर गट फीलिंग इज लाउडर देन योर चैट टुडे। अगर सिक्स सेंस कुछ कह रही है तो लिसन टू इट। लकी कलर इज क्रिम्सन रेड, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, सोशल बटरफ्लाई, फुली चार्ज्ड हो आज, गेट आउट, मीट पीपल, नेटवर्क, मिंगल, शाइन। जो लोग तुमको एक्स्ट्रा समझे, दैट इज देयर प्रॉब्लम। लकी कलर इज सनसेट येलो, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी मिथुन राशि, पीपल कांट रीड योर माइंड बॉस, एक्सपेक्टेशंस को सबटाइटल्स के साथ एक्सप्लेन करो आज के दिन। लकी कलर इज अक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, गुड न्यूज इज स्पीडिंग टुवर्ड्स यू फास्टर देन एन अमेज़न प्राइम पैकेज। अ फ्रेंड्स एक्शन में रिस्टोर योर फेथ इन ह्यूमैनिटी। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 22। लियो यानी कि सिंह राशि, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, डोंट जस्ट आंसर, ओपन द डोर, ऑफर चाय एंड इनवाइट इट इन। हेजिटेशन इज नॉट टुडेज वाइब। लकी कलर इज गोल्ड, लकी नंबर इज 9। वर्गो यानी कन्या राशि, दैट ड्रीम यू हैव बीन पोस्टपोनिंग, स्टॉप ट्रीटिंग इट लाइक लॉन्ड्री, टुडे इज द डे टू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली इंस्पायर्स यू। लकी कलर इज फॉरेस्ट ग्रीन, लकी नंबर इज 31। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर थोड़ी सी देर में वापस आऊंगी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम एंड एक्स हैंडल्स, दोनों जगह पे मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: और बस दोस्तों, जस्ट लाइक द लास्ट सिप ऑफ चाय, दैट समहाउ द बेस्ट सिप ऑफ चाय, टुडेज एडिशन ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स हैज कम टू एन एंड. लेकिन बिफोर प्रिसिला लीव्स यू, लेट मी टेल यू अ स्टोरी अबाउट डेडिकेशन. इंडियाज प्रेस्टिजियस पद्मा अवार्ड्स रिसेंटली ऑनर्ड सम इनक्रेडिबल टैलेंट्स. लेजेंडरी एक्टर मामूठी रिसीव्ड द पद्म भूषण फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. He's worked for 5 decades and he's made 400 films and still he's inspiring generations. That's not a career, yaar. That's like a master class in consistency. And beloved singer Alka Yagnik ji was also honored with Padma Bhushan. Despite facing some health challenges and being on a break from the industry, her voice continues to live rent-free in the hearts of millions of us. And joining the celebration was actor R. Madhavan, who received the Padma Shri. इससे हमें तो ये सीखने को मिलता है कि ग्रेट थिंग्स डोंट हैपन ओवरनाइट, दे हैपन वन डे वन एफर्ट एंड वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम. एंड दैट्स माय टाइम. थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर मॉर्निंग्स विद मी, बोले तो प्रिसिला, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. अभी के लिए टाटा बाय बाय है, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर. तब तक के लिए यू स्टे काइंड, स्टे क्यूरियस, खाओ पियो ऐश करो. और अगर मुझे मिस करोगे तो एक्स और इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033 647 244. Stay tuned and stay hot.
1: Are you ke bada gori bhai baja.

0: लोग खुश होने के रीजंस ढूंढते हैं, लेकिन क्या आपने कभी हम पांच की स्वीटी को देखा है?
1: सारा ज़माना है सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, एंड नाउ यू ट्यून इन विद मी ऑन मिर्ची। एंड आई थिंक दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड कि यार लोगों को ना खुश होने की वजह चाहिए होती है, और ये स्टेट ऑफ माइंड में ना 95% जनता रहती होगी। बट बॉस, लाइफ का सच तो मुझे यही लगता है कि खुशी चीजों से या सिचुएशंस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। ये सब तो कभी कभी आते जाते खुशी दे जाते हैं, बट रोज की खुशी के लिए तो हम ही जिम्मेदार है ना। हैप्पीनेस इज एन आर्ट, और हम पांच की स्वीटी इस आर्ट को बड़ी खूबसूरती से जिंदगी में उतारती थी यार। बंदी ना बिना बात के खुश रहती थी, डोरबेल बजती तो उछलते कूदते गाना गाते हुए दरवाजा खोलने चली जाती। बात क्लियर है बॉस, खुशी के लिए ना दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो डिपेंडेंट ही रह जाएंगे, लेकिन खुद की खुशी का रीजन खुद को बनाएंगे तभी तो खुशी पाएंगे। क्या बोलते हो? और अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि एक बार स्वीटी की परफॉर्मेंस देख ही लो हम पांच में, क्या पता आपको अपने आप को खुश करने का कोई आइडिया ही मिल जाए। चलो जी, फिलहाल के लिए मैं आपको खुश कर देती हूँ मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डाल के, और आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आज भी मुझे याद है मैंने मोहब्बतें कैसे देखी थी। नहीं नहीं, ना वीसीआर पे देखी ना थिएटर में देखी, केबल टीवी पर रात में 12 बजे के बाद नई नई पिक्चरें लगाया करता था हमारा केबल वाला, बस वही छिपते छिपाते देखी।
0: मिर्ची वीसीआर।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बस यार, ये फिल्म देखने के बाद मैं मंत्रमुग्ध हो गई। एक तो यार शाहरुख खान इन द फिल्म, ऊपर से अमिताभ बच्चन के साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन शाहरुख खान देखने को मिले थे, और फिर कास्ट भी इतनी लंबी चौड़ी थी, जिसमें से एक जिमी शेरगिल वॉज माई पर्सनल फेवरेट। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर शाहरुख खान की झलक तो थी, तो बिकॉज ऑफ शाहरुख खान आई यूज्ड टू लाइक जिमी शेरगिल एज वेल। बट ये तो हुई मेरी बात, बाकी सबकी इस फिल्म को करने की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म बहुत शौक में नहीं करी थी, या इसकी स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन के पास चल के नहीं गई थी। एक्चुअली एट दैट टाइम वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और उन्होंने बहुत बड़े सेटबैक्स और फाइनेंशियल लॉसेस देखे थे, जिसके चलते ही हैड नो आइडिया व्हाट नीड्स टू बी डन टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन एट दैट टाइम। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एक दिन बैठ के सोच रहे थे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिर अंदर से एक आवाज आई कि यू आर एन एक्टर, गो बैक टू एक्टिंग, एंड दैट इज वॉट ही डिड। वो सीधे गए यश जी के पास और उन्होंने यश जी को बताया कि आई एम आउट ऑफ जॉब एंड आई नीड समथिंग, आई नीड टू वर्क एंड आई नीड टू अर्न मनी, एंड दैट इज हाउ मोहब्बतें हैपेंड टू हिम। हालांकि मोहब्बतें की स्क्रिप्ट आदित्य चोपड़ा ने DDLJ के पहले ही लिख दी थी, हाँ, लेकिन जब अमित जी की एंट्री इस फिल्म में हुई तो आदित्य ने अमित जी के हिसाब से उनके कैरेक्टर को पूरी तरीके से रीराइट किया, मोल्ड किया, ताकि वो अमित जी के ऊपर सूट करे, और अमित जी के कैरेक्टर को बहुत बड़ा और प्रोमिनेंट भी बनाया इसी के साथ साथ। एंड मोहब्बतें रिलीज होने के बाद ये कह सकते थे कि अमित जी ने कमबैक कर लिया था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: We usually think कि एक्टर्स को मूवी मिलने में क्या ही दिक्कत होती होगी, या डायरेक्टर्स को अपने लीड एक्टर्स मिलने में क्या ही दिक्कत होती होगी, नजर घुमाते होंगे और कोई ना कोई उन्हें मिल जाता होगा. बट ऐसा हमें लगता है, सच्चाई कुछ और ही है.
1: मिर्ची चैट रूम.
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड मोहब्बतें जब बन रही थी तो इसकी कास्ट को कास्ट करना अपने आप में एक टास्क हो गया था. आपको पता है, अमित जी के ऑपोजिट इनिशियली दे वांटेड श्रीदेवी, और ऑफर भी कर दिया गया था उनको ये रोल, लेकिन श्री जी ने इस चीज के लिए मना कर दिया. उसके बाद स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़े एंड हर कैरेक्टर हैड टू बी रिटन ऑफ. फिर इन लोगों ने एक और कैरेक्टर के बारे में सोचा हुआ था, एंड दैट वाज मिथुन चक्रवर्ती, जो कि शिफाली शाह के आर्मी हस्बैंड का रोल प्ले करने वाले थे. लेकिन फिल्म की लेंथ इतनी लंबी हो रही थी कि फिर इस कैरेक्टर को भी इन लोगों ने हटा दिया. ऑल्सो देयर वाज अ टाइम जब यश जी प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म में कास्ट करना चाह रहे थे शमिता शेट्टी वाले रोल के लिए, लेकिन क्योंकि प्रियंका वाज स्टिल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिस वर्ल्ड पेजेंट, वो ये फिल्म नहीं कर पाई. किम शर्मा का रोल करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, और प्रीति झांगियानी वाला रोल समीरा रेड्डी को ऑफर किया था. यहाँ तक कि मूवी के लिए द फर्स्ट चॉइस फॉर द मेन फीमेल लीड, दैट इज ऐश्वर्या राय, वाज नॉट रियली ऐश्वर्या राय, दैट वाज आल्सो रानी मुखर्जी. इतने सारे चेंजेस के बाद फाइनली द फिल्म वॉज मेड. बट वही वाली बात है यार, कि कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना हो, मोहब्बतें अपना रास्ता तो ढूंढ ही लेती है. जैसे कहा गया है कि दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते. मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: उफ, ये रूमर्स भी ना, इन्हीं रूमर्स के चक्कर में तबू को फिल्म मेजर साहब में कास्ट करते करते रह गए डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, जब मूवी बनने वाली थी तो फिल्म मेकर्स तबू को फीमेल लीड में लेना चाहते थे, लेकिन लेकिन लेकिन उस वक्त ये रूमर्स थे कि तबू इज अबाउट टू गेट मैरिड, जिस वजह से फिल्म मेकर्स डिसाइडेड टू नॉट कास्ट हर एंड टुक सोनाली बेंद्रे फॉर द रोल इंस्टेड। बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि रूमर्स पर यकीन करने के बजाय सीधा तबू से ही कंफर्म क्यों नहीं कर लिया इन लोगों ने। हाँ, तब सबके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे ना, शायद इसी वजह से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ होगा, है ना। एनीवेज, कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या कार्डियोलॉजिस्ट्स दिल पर बने हुए गानों को सीरियसली लेते होंगे या फिर फिलोसफिकली लेते होंगे, किस तरीके से लेते होंगे, क्योंकि आई एम श्योर इट इज क्वाइट डिस्टर्बिंग फॉर अ कार्डियोलॉजिस्ट टू लिसन टू अ पेशेंट टेलिंग हिम कि दिल है छोटा सा. दैट क्लियरली मीन्स कि आपके दिल का साइज नॉर्मल नहीं है एंड यू डेफिनेटली नीड टू गो फॉर अ टेस्ट. जस्ट किडिंग यार. आई होप कार्डियोलॉजिस्ट दिल के रिलेटेड गाने जो है उनमें प्रैक्टिकलिटी ना लाते हुए उन्हें फिलोसफिकली इंजॉय कर पाते होंगे. अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट हो ना तो मुझे डीएम करके जरूर बताना. हाँ, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सारा.
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और अब मेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान. एंड मूविंग ऑन टू आज की वो दो धुने जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके मिक्स करके रखी हुई है, और आपने पहचानना होगा कि ये दो धुने एक्चुअली कौन से गानों की है. हियर वी गो.

ओकी डोकी, अब आपने सुनी लिया होगा तो बस आप डीएम कर दो अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेजो। एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेरा फेरी फिल्म बड़ी दमदार और मजेदार थी यार, लेकिन इसका एक गाना है उसके अंदर भी हेरा फेरी हुई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया गया एक गाना था। वो कौन सा है? ये वाला। अच्छा गाना था यार, इसका म्यूजिक काफी डिफरेंट था। नहीं, वेल डिफरेंट इसलिए भी था क्योंकि ये म्यूजिक कहीं से उठाया गया था। वेल बेसिकली इस गाने की म्यूजिक इज एक्चुअली कॉपीड फ्रॉम रिटर्न ऑफ द मैक करके एक म्यूजिक वीडियो है, और इस म्यूजिक वीडियो के सिंगर हैं मार्क मॉरिसन, विच इज एन इंग्लिश सॉन्ग विच गोज दिस वे। एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि ये गाना किसका कंपोज किया गया। Of course, Annu ji. You tune in with me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi. It's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आपको पता है व्हाट वाज आई सर्चिंग फॉर अ व्हाइल अगो? पोस्ट कार्ड्स।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड यार बीइंग अ 90s किड आई रियलाइज कि बॉस जो मजा पोस्ट कार्ड्स में मैसेज लिखकर भेजने में था ना, वो व्हाट्सएप मैसेजेस में नहीं है। एंड यू नो व्हाट हैव आई डिसाइडेड? मैंने डिसाइड किया है टू स्टार्ट एन ओल्ड ट्रेंड दिस ईयर ऑफ सेंडिंग पोस्ट कार्ड्स एंड बर्थडे कार्ड्स टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज़ जो मजा पोस्ट में है ना वो मजा टेक्नोलॉजी में नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि मेरी पोस्ट यानी पोस्ट कार्ड्स पोस्ट से ही आएंगे, बिकॉज़ आई हैव ऑर्डर्ड देम ऑनलाइन। और एक बात और, इफ यू वॉन्ट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम मी तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो कि है मिर्ची सारा उस पर डीएम करो और लिखो कि हाय सारा वेटिंग फॉर योर चिट्ठी। फर्स्ट 5 मैसेजेस को आई विल बी सेंडिंग अ हैंड रिटन पोस्ट कार्ड। चलो ना यार ये पुराना वाला ट्रेंड फिर से शुरू करते हैं, मजा आएगा। वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट। और अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर गोल्ड स्पॉट,
2: यादों को चिट्ठी।
1: यार आज कोई भी कोल्ड ड्रिंक उठा लो, बट नो वन मैचेस योर वाइब। तुम सिर्फ गोल्ड स्पॉट नहीं, गोल्ड की पूरी ब्रेक थी। तुम्हारा असर हमारी यादों पर इतना भारी रहा है। अक्सर जब कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है ना, तो बातों ही बातों में तुम्हारा जिक्र निकल ही जाता है कि यार कहीं से कोई गोल्ड स्पॉट ला दे तो मजा आ जाए। आई रिमेम्बर बचपन में हमारे घर में काम करने वाले यूसुफ भाई ना, हम बच्चों को खुश करने के लिए हमें गोल्ड स्पॉट पिलाया करते थे। कांच की कर्वेशियस तुम्हारी बोतल विद अ टिन का ढक्कन, उफ तुम वाकई चीज बड़ी थी मस्त मस्त। आज भी अगर कोई डार्क ऑरेंज कपड़े पहनकर आता है ना, तो उसका नाम उस दिन गोल्ड स्पॉट ही रखा जाता है। वैसे नाम बड़ा सही था यार तुम्हारा, गोल्ड स्पॉट। बट आई वंडर यही नाम क्यों? एंड वेल, शायद कुछ बातें मिस्ट्री रह जाती हैं। अगर तुम आज भी होती तो कहीं किसी न्यूज आर्टिकल में मेरे सवाल का जवाब भी मिल जाता। इस गर्मी में तुम्हारी ठंडक को याद करती तुम्हारी सारा, जो आपको यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। और वैसे गोल्ड स्पॉट पीने के बाद जो दिल का हाल हुआ करता था ना, वो इस गाने के जरिए अब आपसे बयान किया जाएगा। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Sara zamana, sara ka deewana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
3: इस गाने में सवाल है, लेकिन सवाल इश्क पर है, और मैं तो कहती हूँ कि इश्क अपने आप में ही एक सवाल है, और जिसने ये सवाल समझ लिया ना, अगला काम उसका ये हो जाता है कि समझना उसे ये बवाल है। उदित नारायण विभा शर्मा की आवाज में इश्क मूवी से दिस गाना, इस कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
3: इश्क हुआ टड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़ कैसे हुआ? अच्छा हुआ, जैसे हुआ। और प्यार चीज ही ऐसी है यार, वाकई में। मतलब इश्क जो है ये एक सवाल बनकर ही रह जाता है, आपको पता ही नहीं लगता यार कि कब आपको मोहब्बत हो जाती है। वो तो बहुत टाइम बाद आपके दोस्त आपको बता रहे होते हैं कि भाई ये सारे जो तुम्हारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ना, ये मोहब्बत के हैं। लेकिन इंसान भी ना बड़ी कमाल चीज है, वो जब मोहब्बत में होता है ना तो वो उसे नकार रहा होता है, कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो प्लान ही नहीं किया था ना कि हम प्यार में पड़ना है, या हम प्यार में पड़ेंगे, या हम प्यार में पड़ने वाले हैं। लेकिन प्यार चीज ही ऐसी है यार, बिना बताए दबे पाऊं कब आपकी जिंदगी में एंट्री ले लेता है ना, आपको भी नहीं पता लगता। वही वाली बात है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि आसपास के लोग आपको बता रहे होते हैं कि तुम्हें तो प्यार हो गया है, सिम्टम्स वही है कि रातों को नींद नहीं आ रही है, गालों का कलर जो है वो रेड हो रहा है, वो इंसान आसपास कहीं नजर आता है तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, शर्म आने लग गई है तुम्हें आजकल, सब कुछ ठीक तो है, प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। अगर आपको भी यही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ना अपने अंदर, तो समझ जाइए कि आपको लवेरिया हो चुका है। इसी के साथ यही गाना लगाते हुए अब आपसे कहती हूँ, हम हराई प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझसे मिल लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद जारू ओनली ऑन

अरे हम आए और आप चल दिए, ये क्या बात हुई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आन मिलो सजना फिल्म का ये गाना, और मैं सोच रही थी कि इस तरह के कैसे नाम होते थे ना पुरानी फिल्मों के, आन मिलो सजना, आई मिलन की बेला, आए दिन बहार के, आप आए बहार आई, आया सावन झूम के। झूमते गाते मस्त मोहब्बत में रहते थे ये लोग। और आजकल की फिल्में एनिमल, धुरंधर, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, टाइम टाइम की बात होती है यार। उस टाइम वो चलता था, इस टाइम ये चल रहा है। और आने जाने पे मुझे एक लाइन याद आई, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अभी मैं थोड़ी भीड़ कम करती हूँ, ब्रेक लेती हूँ। ऑफ कोर्स ये ब्यूटीफुल गाना सुनेंगे हम पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

इतना पुराना गाना है जो जब भी किसी रेडियो स्टेशन पे चलता है तो वो रेडियो स्टेशन पे काम करने वाले लोगों को थोड़ी सी घबराहट दे देता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हमारे ना क्या होता है कि रेडियो पे गाने चलते हैं, एड्स चलते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। जहाँ पे कुछ साइलेंस आ जाती है ना, एकदम सन्नाटा कुछ हो जाता है, उसे हम कहते हैं डेड एयर, जो नहीं होनी चाहिए। और जिस गाने की मैं बात कर रही हूँ ना, रजिया सुल्तान का ए दिले नादान, उसमें टुवर्ड्स एंड जहाँ पे लिरिक्स आते हैं, जिंदगी जैसे खोई खोई है, हैरा हैरा है, उसके बाद 4-5 सेकंड का ऐसे पॉज है, साइलेंस, फिर वहां से गाना पिक करता है, ये जमीन चुप है, आसमान चुप है। तो उन लिरिक्स को वजन देने के लिए वो साइलेंस, वो पॉज वहां पे डाला गया है। लेकिन इनकी तो क्रिएटिविटी हो गई, हमारी तो मौत आ जाती कि है रेडियो बंद हो गया क्या, गाना क्यों नहीं चल रहा, आवाज क्यों नहीं आ रही है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi. It's hot.
1: Purani jeans. With Charu. Only on Mirchi.

0: मजा आया क्योंकि एक और पुराना गाना रीमेक बनकर चर्चा में आया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना है 1981 की फिल्म अरमान का द सुपर हिट सॉन्ग
1: रंबा हो
0: डिस्को वाला गाना है। बताने की बात नहीं है कि बप्पी लहरी साहब ने इसे कंपोज किया है। श्याम लाल बाबू राय कॉमनली नोन एज इंदिवर साहब, उन्होंने लिखा है एंड गाया है। क्या गाया है उषा उत्थुप जी ने। वैसे ये गाना सैंपल किया गया है, एक्चुअली कॉपी किया गया है बोल सकते हैं, फ्रॉम अ 1979 सुपर हिट सॉन्ग एक फ्रेंच म्यूजिकल ग्रुप ने जो रिलीज किया था, के सेरा मी विदा, ये वाला। वैसे रामबा हो में ना 70s के एक अमेरिकन गाने का म्यूजिक भी थोड़ा सा लिया गया है, द सॉन्ग कॉल्ड आई फील लव बाय डोना समर्स, जिन्हें क्वीन ऑफ डिस्को भी कहा जाता था। खैर हम अपने वाले पे आते हैं, आप इस गाने का वीडियो देखेंगे ना तो बहुत ही फेस्टिव सेलिब्रेटरी कलरफुल सा वाइब है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

ये गाना मेनली लता मंगेशकर जी एंड एसपी बालासुब्रमण्यम जी ने गाया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन इसमें दो आवाजें और हैं, शैलेंद्र सिंह एंड उषा मंगेशकर जी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उषा मंगेशकर जी ने ज्यादा गाने गाए नहीं, हिंदी फिल्मों में नहीं गाए, लेकिन मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो शी इज अ लेजेंड। इनफैक्ट इस साल उन्हें फिल्म फेयर मराठी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, और भी कई भाषाओं में उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। कुछ हिंदी फिल्मी गानों के लिए भी उनको अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला था, जैसे कि 1977 की इनकार फिल्म का ये गाना, कंपोज्ड बाय राजेश रोशन, रिटन बाय मजरू सुल्तानपुरी एंड सन बाय उषा मंगेशकर जी। जी सुनते हैं यहाँ पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

झूठा वादा करने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ तो वादा तोड़ने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। दाग देलवी साहब का शेर है ये। अच्छा पूनम अलाबादी शायर लिखते हैं, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्च।

0: अंदर मैं तो चला किचन के अंदर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड इफ यू नो ये कैलेंडर कौन है, ये मिस्टर इंडिया वाला कैलेंडर है। 1987 में ये आइकॉनिक मूवी रिलीज हुई थी एंड दिस किरदार कैलेंडर क्या प्ले किया था सतीश कौशिक साहब ने। और सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि कहां से आया था ये किरदार,
1: कैसे कैलेंडर बना। वो मेरे एक फादर के डीलर थे, वो तकिया कलाम था उनका, कि वो कैलेंडर बीच बीच में बोलते थे, पंडित जी क्या बात है, तीन पेटियां आई और तीन पेटियों में से कैलेंडर एक पेटी तो खराब निकली, अभी 2 लाख का बाल कैलेंडर खराब हो गया, तो कैलेंडर बीच में बोलते, कैलेंडर वर्ड वहां से आया। एंड दैट इज हाउ कैलेंडर्स नेम वॉज दिस थिंग। फर्स्ट डे शूटिंग आई रिमेम्बर कि इसको थोड़ा सा फेमिनिन बनाना है, और वो परचून की दुकान पे सीन था, एंड एवरीबॉडी वॉज इन लाफ्टर व्हेन आई डिड दैट, यू नो।
0: और क्या ही डायलॉग्स लिखे हैं सलीम जावेद ने, याद है इसमें अनिल कपूर का किरदार अरुण भैया इनसे पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम कैलेंडर क्यों रखा, तो वो बोलते हैं कि जी वो इंग्लिश में कुछ नाम रखना चाहते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

0: काश जैसा इनके साथ हुआ हमारे साथ भी हो जाए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ माला माल फिल्म के नसीरुद्दीन शाह साहब के किरदार की। ये 1988 की फिल्म है माला माल, विच इज बेस्ड ऑन 1985 की हॉलीवुड फिल्म ब्रूस्टर्स मिलियंस, जो अगेन एक नॉवल पर बेस्ड है। इस सब्जेक्ट पे कुछ 6 फिल्में बन चुकी हैं। तो अपने वाले की बात करें तो इसमें ये होता है कि एक लुखे लफंगे गरीब से लड़के को अचानक से उसके करोड़पति दादाजी की दौलत मिल जाती है, 330 करोड़ रुपए। लेकिन शर्त यह है कि उसको 30 दिन में 30 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तभी उसको 300 करोड़ मिलेंगे। अभी इस चक्कर में क्या क्या होता है, इट इज अ फन वॉच। मतलब काफी खामियां हैं फिल्म में, लेकिन तो भी एक बार तो देखे जा सकती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ नसीरुद्दीन शाह साहब एक्टिंग। साथ में सतीश शाह साहब भी हैं, वो भी मजेदार हैं। तो कभी मौका मिले तो देखिएगा। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: ओ,

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

तो मैंने देखी 1979 की फिल्म नौकर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में है संजीव कुमार साहब, जया भादुरी एंड महमूद। अब एक्टर्स इस कैलिबर के हैं तो परफॉर्मेंसेस तो अच्छी होंगी। यस, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, इसीलिए फिल्म एंटरटेनिंग है। तो सीन कुछ यूं होता है कि संजीव कुमार साहब एक सिंगल फादर प्ले कर रहे हैं जो दूसरी शादी नहीं करना चाहते, इस डर से कि उनकी जो छोटी सी बेटी है उसकी स्टेप मदर उसको ढंग से ट्रीट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन उनकी फैमिली उनको शादी करने के लिए कन्विंस करती है। अब जब ये लड़की देखने जाते हैं तब क्या चक्कर चलता है मालिक नौकर का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हो जाता है। और एक्चुअली आई वाज लाइकिंग जया भादुरी जी की परफॉर्मेंस। व्हेन आई रेड अबाउट इट आई गॉट टू नो कि इस फिल्म में उनको अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो मेरी तरफ से एक फन लाइट मूवी है ये, जिसे आप देख सकते हैं। थोड़ा ड्रामा भी है क्योंकि इसमें ललिता पवार जी भी हैं, बट देख सकते हो, रिकमेंडेड। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड विटियस्ट एक्टर्स इंडियन सिनेमा के थे फारूक शेख साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो उनकी शुरुआती फिल्मों में से थी सुपरहिट फिल्म नूरी, जिससे वो और पूनम ढिल्लों दोनों बहुत पॉपुलर हुए। पूनम ढिल्लों की आई थिंक वो दूसरी फिल्म थी। तो उनसे ना बहुत सालों बाद एक इंटरव्यू में पूछा गया कि नूरी फिल्म से पूनम ढिल्लों के पैर जो है वो तो फिल्म इंडस्ट्री में जम गए, लेकिन ये थोड़े से फिसल गए क्योंकि उनका करियर उतना नहीं चला था इस फिल्म के बाद। तो इस सवाल के जवाब में सुनिए फारूक शेख साहब ने क्या कहा।
1: दरअसल नूरी के बाद जो है मैंने पूनम से पूछ लिया था कि वो अपने जूते कहाँ बनवाती हैं ताकि मेरे भी पैर खूब जम जाएं। तो दो साल तक मैंने नूरी के बाद कोई फिल्म साइन नहीं की, मैं इसी की तलाश में था कि कहाँ से बनवाऊं। फिर दो साल के बाद मैंने सई परांजपे के साथ चश्मे बद्दूर की, जो खुशकिस्मती से बहुत चली और मकबूल हुई, और उसके बाद फिर उमराव जान की वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर जो है पूनम जी अपनी जगह जमी रही और मैं अपनी जगह चलता रहा।
0: भाई मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ फारूक शेख साहब की। मैं तीन फिल्में उनकी सजेस्ट करूँ आपको देखने को। ये फिल्में हैं पीछा करो, किसी से ना कहना और अब आएगा मजा। मजा आ जाएगा आपको ये फिल्में देखकर। खैर यहाँ पर हम नूरी फिल्म का गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

देवानंद साहब को मुच्छी लगाने का पता नहीं क्या शौक चढ़ा था कुछ फिल्मों में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1975 की फिल्म वॉरंट का ये गाना, जिसमें देवानंद साहब पे जो मूछों वाला लुक है ना, वो somehow मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। बहुत ही क्लाउनिश कैरिकेचरिश लग रहे हैं वो। और मुझे हैरानी है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि देवानंद साहब को ना मूछे लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उनको अपना क्लीन शेवन लुक पसंद था और उनको नकली मूछे लगाना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए किसी रोल के लिए अगर मूछ चाहिए भी होती थी तो वो अपनी उगा लेते थे। लेकिन ये वाले गाने में और एक और गाना था गैम्बलर फिल्म का, दोनों में जो मूछें उनकी दिख रही है ना वो नकली दिख रही है। इसमें तो खास करके जैसे वो चाचा चौधरी की मूछ लगी वो बिल्कुल ऐसी लग रही है। खैर कई बार हो जाते हैं गूफ अप, वो क्या बोलते हैं, फैशन फॉर पा, फैशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। द फैक्ट रिमेन्स दैट देवानंद साहब वॉज एक्सट्रीमली चार्मिंग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्च।

कई साल पहले यानी कि 1929 में गुजरात के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और क्योंकि परिवार में जय श्री कृष्णा होता रहता था, बच्चे का नाम जयकिशन रख दिया गया। जी मैं बात कर रही हूँ शंकर जयकिशन वाले जयकिशन की। शंकर जयकिशन वो जोड़ी, वो डुओ जिसने हिंदी फिल्म संगीत को वैसा बनाया जैसा कि हम उसे जानते हैं। इनके म्यूजिक से पहले ना फिल्मी गाने फिल्मों में फिलर्स के जैसे इस्तेमाल किए जाते थे। इन्होंने वो गाने बनाने शुरू किए जो पार्ट ऑफ द स्टोरी थे। इन्होंने गानों में ऑर्केस्ट्रा का मैसिव इस्तेमाल करना शुरू किया और आने वाले म्यूजिक कंपोजर्स के लिए एक मिसाल बन गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

इस गाने को ना कहीं पर हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल कहा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म में धर्मेंद्र के कैमियो रोल के बारे में भी ऐसा ही कुछ कहा गया था, हॉन्टिंग लैक ऑफ प्रेजेंस, मतलब इस फिल्म में उनका किरदार था भी और नहीं भी, क्योंकि वो वहीदा रहमान के किरदार के पास्ट का हिस्सा है। ये गाना भी एक्चुअली वहीदा रहमान और धर्मेंद्र पर ही पिक्चराइज्ड है, लेकिन धर्मेंद्र का कभी भी फेस नहीं दिखाया गया है। अलग अलग एंगल से उनको दिखाया गया है, उनकी आवाज सुनाई गई है, लेकिन फेस ठीक से नहीं दिखाया गया है। आपने फिल्म देखी है तो आपको पता है क्यों, नहीं देखी है तो देख लो। और एक्चुअली धर्मेंद्र साहब कितने काइंड हार्टेड थे या सिक्योर थे अपने करियर में, उस टाइम वो बहुत बड़े स्टार थे। और दूसरी तरफ फिल्म के मेन हीरो हम कह सकते हैं राजेश खन्ना, वो नए नए थे, तो भी धर्मेंद्र ने उनके साथ इस तरह का ये कैमियो रोल निभाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मुझे भी ट्यून इन हो आप, और जिन जिन लोगों के कान खड़े हो चुके हैं इमरान हाशमी का नाम सुन के, देन ब्रो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, बिकॉज इमरान हाशमी इज गोना मेक अ कमबैक। नहीं नहीं, मतलब वो ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं, बट ही इज गोना मेक अ कमबैक इन द हॉरर जॉनरा। यस यू हर्ड इट राइट। सो बेसिकली देयर इज हाई कॉन्सेप्ट म्यूजिकल हॉरर फिल्म जिसका नाम रूह रखा गया है, और इसमें अपने एक्टिंग की रूह डालेंगे नन अदर देन इमरान हाशमी। एंड मूवी इज सेट टू रिलीज इन 3 different languages, दैट इज हिंदी, तमिल एंड तेलुगु, और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं मयंक शर्मा, जिन्होंने फिल्म छोरी भी बनाई थी। अगर आपने अभी तक वो फिल्म नहीं देखी तो उसके 2 हिस्से आ चुके हैं, आई मीन 2 parts हैं। डू वॉच इट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस लेवल का काम करते हैं ये व्हेन इट कम्स टू अ हॉरर फिल्म। वैसे आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी, क्योंकि अगर इमरान हाशमी ने कोई स्क्रिप्ट डिसाइड की है, आई मीन उसको सिलेक्ट किया है, देन इट मस्ट डेफिनेटली हैव सम सब्सटेंस। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, मैं तो फिल्मी गेम खेलने की बात कर रही थी, आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? डर्टी माइंड। चलिए चलिए चलिए, अब दिमाग को वापस ट्रैक पे लाते हुए आपको याद दिला दूं, इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्मची। सो बेसिकली यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इंस्टा डीएम में जाके अपना नंबर भेजने के लिए, ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं अनुपमा जी। सबसे पहले बताना चाहूंगी मैम कि आज इस गेम की शुरुआत मैंने थोड़े पुराने जमाने की फिल्मों से की है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। तो तीन भाई हैं जो बचपन में बिछड़ जाते हैं और फिर साथ आते हैं। इनका एक गाना है कि एक जगह जब जमा हो तीनों।
3: अमर अकबर एंथनी।
0: क्या बात है, अमर अकबर एंथनी में एक गाना है जिसमें एक हीरो जो है वो अंडे के अंदर बैठ के एंट्री मारता है।
3: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
0: क्या बात है, कौन है ये?
3: अमिताभ बच्चन।
0: बहुत बढ़िया, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो और उनकी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते थे।
3: सिलसिला।
0: बहुत बढ़िया, सिलसिला में चांदनी कौन है?
3: मेरी फेवरेट रेखा।
0: ओहो, रेखा की किस फिल्म में उनका बेटा एलियन से कांटेक्ट करता है?
3: कोई मिल गया।
0: वाह, कोई मिल गया में एलियन किसको सुपर पावर देता है?
3: वो उसको देता है, ऋतिक रोशन, रोहित को।
0: बहुत बढ़िया, ऋतिक रोशन किस फिल्म में पिंक कलर का फोन यूज करते हैं?
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिलों में अपनी बेताबियां कौन लेकर घूम रहा है?
3: फरहान अख्तर।
0: फरहान अख्तर किस फिल्म में खुद को ही कॉल करते हैं?
3: वो यार कौन सी थी, एक कौन सी थी, कॉलिंग।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ
3: कार्तिक कॉलिंग।
0: बहुत बढ़िया, कार्तिक कॉलिंग। कार्तिक में कार्तिक को किससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है?
3: बस यही नहीं पता मुझे।
0: Never mind. बट इतना मस्त जो गेम खेला है, मुझे लगा था कि यहाँ तक मैं आप कई बार अटकेंगे, बट एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। That is brilliant, ma'am.
3: क्योंकि मैं आपको सुनती हूँ ना, फिल्में मिलती।
0: How sweet. Thank you so much. तो चलिए, इतना brilliance जो आपने दिखाया है उसके लिए ये टैग भी बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई, हमें आज की अपनी पहली मिर्ची फिल्मची मिल चुकी है। इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म जी गेम की बात कर रही थी, आप कहाँ जा रहे हो यार, चलिए वापस ट्रैक पे आइए। सो बेसिकली इट्स टाइम कि आपके अंदर के फिल्मची कीड़े को जगाया जाए। हर दिन मैं ये मिर्ची फिल्मची ढूंढने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली फिल्मची आज जो हमें मिली है वो है अनुपमा मैम, जिन्होंने इस गेम की शुरुआत की थी। अब आगे इस गेम को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं राज। क्या तैयार हैं आप?
3: बिल्कुल।
0: ओके, तो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में कार्तिक को किससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण किस फिल्म में झूमर के नीचे मर जाती हैं?
3: ओम शांति ओम।
0: ओम शांति ओम में भागो ये वाला डायलॉग किसका है?
3: शाहरुख खान जो भागो बोलता है डाकू बन के।
0: हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। शाहरुख खान किस फिल्म में रेडियो जॉकी बने?
3: दिल से।
0: बहुत बढ़िया। दिल से में उनकी शादी किससे तय होती है?
3: प्रीति जिंटा।
0: प्रीति जिंटा की फिल्म जिसमें उनको 12:45 आइसक्रीम खाने का मन होता है।
3: सलाम नमस्ते।
0: बहुत बढ़िया। सलाम नमस्ते में उनका फ्लैटमेट कौन है?
3: सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान किस फिल्म में प्रोफेसर के रूप में टेररिस्ट हैं?
3: कुर्बान।
0: कुर्बान में अपना दिल उनके ऊपर कौन कुर्बान कर देता है?
3: उनकी वाइफ करीना कपूर।
0: करीना किस फिल्म में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई?
3: कभी खुशी कभी गम।
0: बहुत बढ़िया। कभी खुशी कभी गम में स्टूल पे चढ़ के अपने पति का टाई कौन ठीक करता है?
3: जया बच्चन।
0: बहुत ही बढ़िया सर, क्या बात है। आज यहाँ तक ही हमारे सवालों का सिलसिला था, बट आपने हर सवाल का जवाब बहुत ही मस्त दिया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
3: गुड, ग्रेट। आपसे बात करके और ग्रेट हो रहे हैं।
0: अरे अरे, ग्रेटनेस तो आपकी है जो आप इतनी तारीफ भी कर देते हैं। चलिए फिर इसी बात पे, जो अच्छा गेम खेला है आपको ये टैग तो देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो आपके अंदर के इस फिल्मची को ढूंढने का सिलसिला कल फिर से लेकर आऊंगी, लेकिन अभी बाकी की फिल्मी बातें करेंगे ना यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: एक्टर्स में मेन कैरेक्टर एनर्जी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल बाबू मोशा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हर फ्राइडे हमें कोई ना कोई फिल्म जरूर मिलती है, और हर फिल्म में मेन कैरेक्टर्स तो होते हैं लेकिन उनकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए साइड कैरेक्टर्स भी होते हैं। एंड आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे साइड एक्टर्स की डिस्कशन कर रही हूँ जिन्होंने मेन लीड से ज्यादा स्पेस हमारे दिल में बना ली है। और लिस्ट में सबसे पहले हमने हेरा फेरी से बाबूराव गणपतराव आते की बात की। नंबर दो पे वेलकम के उदय शेट्टी एंड मंजनू भाई। नंबर तीन पे भूल भुलैया से छोटा पंडित। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट मुन्ना भाई MBBS से सर्किट। भाई ने बोला करने का मतलब करने का। जिस तरीके से अरशद वारसी ने सर्किट के कैरेक्टर के जरिए एक सच्चा दोस्त अपने आप को प्रूव किया है ऑफ मुन्ना भाई, बोले तो संजय दत्त का किरदार ऑफ कोर्स इज रियली कमेंडेबल। एंड उनको देखने के बाद इन द मूवी हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि भाई अपने जीवन में भी एक सर्किट तो मांगता है। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लास्टली बात करते हैं फिल्म ऑल द बेस्ट से RGV की, बोले तो रघुनंदन दास गोवर्धन दास वाकावले। ढोंढू जस्ट चिल, ये डायलॉग हर दूसरे इंसान के जुबान पे जरूर है। मतलब ये पूरी दुनिया जो है वो हाई ऑन स्ट्रेस है, लेकिन जिस तरीके से उनकी फिलॉसफी है ढोंढू जस्ट चिल, इट जस्ट रेजोनेट्स विद द एंटायर जनरेशन। तो बताइए मेरी इस लिस्ट में आप भी कुछ ऐसे ही साइड कैरेक्टर्स का नाम ऐड करना चाहेंगे? देन फील फ्री टू डू दैट। 9930983983 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।